0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: रुक छोरी रुक,
1: सर पे न झुक, अच्छी नहीं ये बहाने।
0: अरे तक जरा तक,
1: जल्दी से बक, कहता है क्या वो दीवाने।
0: छोरी छोरी छोरिया,
1: जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा जा जा छोड़ जा।

0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा।
1: होश करो तुम,
0: होश हुए गुम, देखा जो मुखड़ा तुम्हारा। आशिकों की सुन,
1: छोड़ मेरी गुन, ऐसे ही कर ले
0: गुजारा। चोरी आ आ चोरी आ,
1: जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा जा जा छोरा, जा।

0: फिर भी मोरे जिया राम चमके, अरे थम थम कोई बिझुरिया।
1: बाह बाह बाह, तुहार जवाब नाही।

तैयार हो जा। सुन वालो, उजाला ला रहे उजाला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन देन हाँ में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स तू तैयार हो जा और जल्दी से अपन टिकट खरीद ले ब्रासा फेस्ट जादा 29 en zondag 30 augustus GIA Event Center Den Haag mee. Get your early bird tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest.nl.

हैं बीनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुनवालो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खाई बीनकोट रावल, तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवाज़ फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

ये उजाला रेडियो है। अब यहाँ से हम अपना हफ्तावार प्रोग्राम सबरंग आगाज करते हैं। हर एक सुनने वालों को आदाब अर्ज और नमस्कार, मैं निशा बोल रही हूँ। इस प्रोग्राम सबरंग में सभी सुनने वालों को एहतराम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। संगीत जो हमने चुने हैं आपको सुनवाने के लिए, इन गीतों की खुशबू से आपका दिल महक उठेगा, आप इत्मीनान से खूबसूरत एहसासों में प्रोग्राम से लुत्फ उठाइए, मजे लीजिए। शुरू करती हूँ महान शास्त्रीय संगीत का गायक भीमसेन जोशी और प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर से ये भजन।

राम का गुणगान करिए, श्रीनिवास कले का संगीत और पंडित नरेंद्र शर्मा से पेश था ये भजन। खूबसूरत जिंदगी की तामीर दुआओं पर होती है। दिल की गहराइयों से दुआ है कि खूबसूरत जिंदगी हमेशा आपका नसीब रहे। खुदा आपको हर मुश्किल व परेशानी से महफूज रखे और आसानियां अता फरमाए।

रूहानी अंदाज में पेश था ये मजहबी संगीत मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में। अगर तुम्हारे आना ही का है सवाल, तो फिर चले आओ, मैं हाथ बढ़ाता हूँ दोस्ती के लिए।

तेरे नज़दीक आना चाहता हूँ। असद अजमेरी का कलाम, मौसिकी थी नायाब राजा की, आवाज़ थी उस्ताद ग़ुलाम अली की। तूने नफ़रत से जो देखा, तूने नफ़रत से जो देखा, तो मुझे याद आया कैसे रिश्ते तेरी खातिर तोड़ आया हूँ। कितने ढूंढले हैं ये चेहरे जिन्हें अपनाया है, कितने उलझी थी वो आंखें, कितने उलझी थी वो आंखें जिन्हें हम छोड़ आया हूँ। जो भी दुख या न था याद आया।

क्या अहमद फराज का कलाम और उस्ताद जाकिर हुसैन की मौसिकी थी, आवाज हरी हरन की। अजीब जलवा नुमाई है, जिधर देखूं तुम ही तुम हो। मुझे तो आईने में अक्स भी मेरा नहीं मिलता, तेरे जलवे अब मुझे हर सू नजर आने लगे।

प्यार भरे अंदाज में पेश थी ये गजल महान गायिका लता मंगेशकर की आवाज में। जगजीत सिंह की मौसिकी कलाम था सबा अफगानी की। उसकी निगाह में कोई जादू जरूर था, जिस पर भी परी उसके जिगर में उतर गई।

सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगे हम। कितने हैं जो आज भी सपनों की रोटी पकाते हैं और खाली पेट सो जाते हैं। मना दे से पेश था ये गीत, शंकर जयकिशन संगीत से सजाए हैं और शैलेंद्र ने तर्स को लिखे थे। अब लीजिए पेश है अगला गीत, तलत महमूद और लता मंगेशकर के मिलकर क्या सुनाएंगे, आइए सुनें।

चमका चमका सुबह का तारा से रामचंद्र का संगीत रचना और नूर लखनवी का लिखा तर्ज था। अगला गीत सुनवाने को जा रही हूँ, गाने वाले हैं हेमंत कुमार।

साथ हमारा दे न सके, हेमंत कुमार की आवाज और उन्हीं का लिखा तर्ज में पेश था ये गीत। कुछ मिला कुछ मिला, कुछ मिलते मिलते छूट गया, शायद शायद सपना था, आंखें खुलते ही टूट गया। प्रीति कैसी बोल रे दुनिया,

सभी सुनने वालों को निशा की तरफ से एक बार फिर आदाब अर्ज और नमस्कार। कई हफ्तों से हम उन महान फनकारों के बारे में इत्तला किया है जिन्होंने ऐसे काम किए हैं कि आज भी जब हम बॉम्बे फिल्मी दुनिया की फिल्मों की चर्चा करते हैं तो उन लोगों को हम जिक्र करते हैं जिन्होंने फिल्मी दुनिया के इतिहास के पन्नों पर मेहर लगाए हैं। पिछले हफ्ते की प्रोग्राम में हमने एक ऐसे ही फनकार के बारे में बयां की है जिन्होंने कई यादगार फिल्में पेश की है। वह है पेशकश और हिदायतकार महबूब खान। महबूब खान ने कई फिल्में बना चुके थे जो अमर है। उन्होंने फिल्म मदर इंडिया की स्क्रिप्ट तैयार कर चुके थे लेकिन उसे इंतजार था तो सिर्फ नरगिस की। पिछले हफ्ते के प्रोग्राम में हमने बतलाई थी कि महबूब खान ने राज कपूर के पास गया था उसे नरगिस के इजाज़त मांगने, क्योंकि राज कपूर को एतराज़ था, वो नहीं चाहते थे कि नरगिस कोई प्रोड्यूसर के लिए अदाकारी करे। और महबूब खान ने फिल्म मॉडर्न इंडिया के अहम किरदार के लिए सिर्फ नरगिस को पसंद किया था। पर महबूब खान कब और कैसे मुतासिर हुआ मॉडर्न इंडिया बनाने को, हम आपको ले चलते हैं 40वीं दौर में।

महबूब खान ने 2-3 फिल्में बना चुके थे। एक दिन शूटिंग के बाद उनके दोस्तों ने महबूब से कहा कि चले आज हम एक अंग्रेजी फिल्म देखते हैं। मेट्रो सिनेमा में कई हफ्तों से एक ही फिल्म पर्दे पर दिखा रहे हैं, फिल्म द गुड अर्थ। महबूब खान को शौक था अंग्रेजी फिल्में देखने को। फिल्म द गुड अर्थ देखने के बाद महबूब खान की दोस्तों जज्बाती तौर पर मुतासर हुआ, पर महबूब खान अपने दोस्तों से कहा कि ये कहानी हमारे गांव की औरतों की कहानी भी है, इस कहानी में क्या खास बात है। महबूब की दोस्त बाबू भाई मेहता उनसे कहा कि मुझे एक हफ्ता की मोहलत दीजिए, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, कहानी अच्छी है और किताब का नाम है द मर्डर। तो इसी तरह महबूब खान ने फिल्म द गुड अर्थ की कहानी और बाबू भाई मेहता की पढ़ी हुई कहानी द मर्डर दोनों मिलाकर नेगती फेतख में फिल्म औरत बनाया था। फिल्म औरत जिसमें महबूब खान की दूसरी बीवी सरदार अख्तर अदाकारी किया था, और इसी फिल्म में से हम आपको एक गीत सुनाते हैं।

फिल्म औरत का गीत आपने अभी सुरेंद्र और ज्योति से सुना अनिल विश्वास के संगीत पर। खास बात है कि इस फिल्म के अदाकारा महबूब खान की दूसरी बीवी सरदार अख्तर थी। इस गीत से पहले आपने सुना कि महबूब खान फिल्म द गुड अर्थ और पर्ल इस एस बुक के लिखी हुई किताब की कहानी द मदर दोनों कहानियां मिलाकर नेखतिन फेरतख में फिल्म औरत बनाया था। फिल्म औरत सुपर हिट हुई थी और 25 हफ्ते बॉम्बे की स्वास्तिक थिएटर में दिखाई गई थी। इस फिल्म औरत की साहूकार खेल्स हीटर पैसे की लेन देन करने वाले थे कन्हैया लाल, जिन्होंने फिल्म मॉडर्न इंडिया शायद देखे होंगे, उन्हें कन्हैया लाल का किरदार याद होंगे। अहम किरदार था लाला की। कन्हैया लाल को कैसे फिल्म औरत में लिया गया? उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ अक्सर स्टूडियो जाता था, जिसे फिल्मों में छोटी मोटी किरदारी के लिए बुलाया जाता था। कन्हैया लाल को शौक था अपने बड़े भाई के साथ स्टूडियो जाने को। स्टूडियो के बाहर दरख्त की छांव में साथियों से गपशप में उनके दिन अच्छे से गुजर जाता था। इसी तरह एक दिन कन्हैया लाल अपने दोस्तों के साथ बातें कर रहा था। काफी शोर मचा रहे थे सब। महबूब खान के दोस्त बाहर जाकर देखा तो उन सब की हल्ला गुल्ला में एक शख्स की आवाज उसे अलग लगा। उसे एहसास था कि महबूब खान को ऐसे ही आवाज की तलाश है फिल्म औरत में साहूकार की किरदार निभाने के लिए। महबूब खान कन्हैया लाल से मिलकर बहुत खुश हुआ था। उसे फिल्म औरत की साहूकार लाला मिल गया था। महबूब खान को कब, कहां और कैसे नरगी से पहली बार मुलाकात हुई, आगे चलकर हम आपको बतलाएंगे।

अभी आपने उमा देवी यानी अदाकारा तुनतुन की आवाज में फिल्म अनोखी अदा का गीत सुना, जिस फिल्म की पेशकश और हिदायतकार थे महबूब खान। महबूब खान की मुलाकात नरगिस से पहली बार कहाँ हुई थी? महबूब खान अपने दोस्त के साथ स्टूडियो से घर जा रहे थे। बारिश हो रही थी, दोनों भीग गए थे और आगे जाना मुश्किल था। सामने जद्दन बाय और मोहन बाबू का मकान था, नरगिस के वालदैन। महबूब खान ने अपने दोस्त से कहा, ये जद्दन बाय और मोहन बाबू का मकान है, चले हम थोड़े देर के लिए जद्दन बाय के यहाँ रुक जाते हैं। नरगिस के वालदैन महबूब खान को देखकर खुश हुए और अंदर आने को कहा। महबूब खान अपने दोस्त के साथ चाय पी रहे थे, उसी वक्त फिर से दरवाजे की घंटी बजी। नौकर ने जब दरवाजा खोला तो नरगिस सिर से पांव तक भीगी अंदर दाखिल हुई, दोनों को सलाम किया और फौरन अपने कमरे में चले गए। महबूब खान ने नरगिस को देखते ही अपने दोस्त से कहा, हम इस लड़की को अपने अगली फिल्म के लिए लेना चाहते हैं, आपकी राय क्या है? महबूब खान का दोस्त ने कहा, मेरी नज़र में लड़की अभी छोटी है। महबूब खान ने कहा कि कोशिश करने से क्या कुछ नहीं होता है। उन्होंने एक नई लड़की की तलाश में था अपने अगले फिल्म तकदीर के लिए और नरगिस को देखते ही उसे पसंद कर लिया था। अगले दिन महबूब खान ने अपने दोस्त को जद्दन बाय और उनके शौहर मोहन बाबू के पास जाने को कहा, जी हाँ, ये कहने के लिए कि उसने उनकी बेटी को अपनी फिल्म तकदीर में अहम किरदार के लिए पसंद किया था। लेकिन जद्दन बाय जब सुना कि महबूब खान ने उसकी बेटी नरगिस को फिल्म तकदीर के लिए पसंद किया था तो उन्होंने एतराज़ किया, ये कहकर कि नरगिस अभी 14 साल की बच्ची है। पर मोहन बाबू नरगिस के वालिद अपने बीवी को समझाया और कहा कि बेबी अब 14 साल की हो गई है, छोटी बच्ची नहीं है। आखिर मियाँ बीबी मान गए थे और अपने बेटी नरगिस को इजाज़त दिए फिल्म तकदीर में अदाकारी करने को। एक गीत के बाद कहानी हम आगे बढ़ाएंगे। आइए सुने फिल्म अनोखी अदा में से एक और गीत।

इस फिल्म से पहले आपने सुना कि नरगिस की वालदैन अपने बेटी को इजाजत दिए थे महबूब खान की फिल्म तकदीर में अदाकारी करने को। अगले दिन जब नरगिस महबूब स्टूडियो में कदम रखी तो महबूब खान नरगिस को नहीं पहचान सका। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि ये तो वो लड़की नहीं है जिसे वो उस दिन देखा था। ये लड़की तो देखने में लंबी और मोटी लग रही है। जी हाँ, वो नरगिस ही थी। उसकी माँ अपने बेटी को ऐसे सजाई हुई थी ताकि नरगिस देखने में सयानी लगे। जद्दन बाई अपने बेटी को ऊंचे एरी की जूते और घाघरा चोली के साथ चार घाघरा पहनाई थी ताकि देखने में वो और सयानी लगे। वैसे तो नरगिस 4 साल की उम्र में अपने माँ की फिल्मों में अदाकारी कर चुकी थी। फिल्म तकदीर में नरगिस 14 साल की उम्र में अहम किरदार निभाई थी और वो भी उन दिनों का मशहूर अदाकार मोतीलाल के साथ। फिल्म तकदीर के कामयाबी से महबूब खान की तकदीर जाग उठा। इस फिल्म के बाद उन्होंने फैसला किया फिल्म हुमायूं बनाने को। इस फिल्म उन्होंने अशोक कुमार, वीना और दोबारा नरगिस को लिया था। महबूब खान के लिए नरगिस खुश नसीब थी। फिल्म हुमायूं के बाद महबूब खान और कई फिल्में बनाए जैसे अनमोल घड़ी, नूर जहान के साथ, ऐलान, सुरेंद्र और मुनव्वर सुल्ताना के साथ। फिल्म अनोखी अदा जिसमें नसीम और सुरेंद्र अदाकारी किए। फिर नेखती नेखन फेर तक में महबूब खान ने फिल्म अंदाज पेश किया जिस फिल्म में नामी फनकार थे नरगिस, दिलीप कुमार और राज कपूर। इस फिल्म की हर एक नगमे सुनते ही कानों में शहद घोलते हैं और नौशाद अली की मौसिकी कौन भूल सकता।

फिल्मी दुनिया आपने अभी सुना, जिसमें हमने महान मारूफ शख्स महबूब खान के बारे में बयान किया। प्रोग्राम आगे बढ़ाते हुए आइए सुने ये मतलब का गाना मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ में।

दीवाना आदमी को बनाती है रोतियां। दिल छू लेने वाले गीत पेश था, स्वर थी मोहम्मद रफी साहब की। ये नजर मुंतजिर है तेरी आज भी, दिल किसी और से आशना ही नहीं। मैं क्यों रास्ता दूं किसी और को, जब कोई तेरी जैसे बना ही नहीं। मन मेरा तुझको मांगे।

अनमोल नगमा पेश था कल्याण जी आनंद जी का सजाया संगीत, बोल था शायर इंदिवार की। रात का अंधेरा पूछ रहा है हमसे, कहाँ गई वो रात भर बात करने वाले। हमने कहा मेरी आंखों से कोई नींद लिए जाता है,

शहराना अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार मदन मोहन की मौसिकी थी, दर्श को लिखे थे शायर राजेंद्र कृष्ण। अब आइए सुने किशोर कुमार से ये नगमा।

कमाल का नगमा पेश था, राजकमल का संगीत रचना था, गीतकार थे इंदु जैन। ना किसी का दिल मुझे चाहिए, ना किसी के दर के तलाश है, सुनाने को जा रही है मीठे सुर में आशा भोसले।

0: 24 uur per dag en 7 dagen per week de beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.
1: सुनने वालों, ये आप ही का उजाला रेडियो है और यहीं से एक बार फिर आप सभी को स्वागत है।

Raza Mila Fest. Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Braza Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brazafest.nl. Braza Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर ये ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

महकती जवां चांदनी हो, फिल्म प्यासे दिल में से ये नगमा लिया है। मौसिकार खयाम की मौसिकी थी। दर्स को लिखे थे शायर जाम निसार अख्तर। तुम मेरे हक में बोला तो ऐसा लगा, अब मिली है सवरती हुई जिंदगी। दिल की ये आरजू थी, दिल की ये आरजू थी, कोई दिल रुबा मिले।

सदाबहार नगमा पेश था, आवाजें थी महेंद्र कपूर और सलमा आगा की, रवि की मौसिकी थी और हसन कमाल का लिखा तर्ज था। फिल्म नजराना में से अगला गाना पेश है, आवाजें है मुकेश जी और स्वर की मालिका लता मंगेशकर की।

फिल्म नजराना में से ये दो गाना पेश था और ये फिल्माया गया था राज कपूर और वैजंती माला पर। जिंदगी जिंदगी वीरान थी, चाहना थी जीने की, देखा उसे तो मुझे बहाना मिला जीने का। हमें और जीने की चाहत ना होती अगर अगर तुम ना होते।

सदा बहार नौमा पेश था, राहुल देव बर्मन का सजाया संगीत था और गुलचन बावरा का लिखा तर्ज। शायराना अंदाज में पेश है ये नगमा मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

एवर ग्रीन सॉन्ग पेश था संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत रचना था। करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए, करीब आओ तो शायद समझ में आ जाए कि फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। दूर रहकर ना करो बात, करीब आ जाओ।

मोहब्बत भरी अंदाज में पेश था ये नगमा। मौसिकार रवि की मौसिकी थी और स्वर मोहम्मद रफ़ी साहब की। इसे रोमानियत अंदाज में सुनवाते हैं अगला गीत। आवाज़ें हैं हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की।

संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का संगीत और शायर इंदिवार का गीत रचना में पेश था ये ड्यूएट। एक बार फिर लता मंगेशकर से सुनवाते हैं अगला गीत और सुर से सुर मिला रहे हैं मन्ना देसाई।

फिल्म चोरी चोरी में से पेश था ये जुगल गीत। शंकर जयकिशन संगीत से सवारे थे, बोल था शायर हसरत जयपुरी का। हो जो मुमकिन तो मुझे अपना बना लो तुम, मेरी तन्हाई गवाह है कि मेरा दिल नहीं लगता तेरे बिना, तेरी बिन जीना नहीं।

तेरे बिन जीना नहीं, बलि ब्रह्मवत की आवाज थी। संगीत सजाने वाले थे बलि ब्रह्मवत और अहसान अहमद दर्शको लिखे थे। लता मंगेशकर से आइए सुने ये नगमा।

फिल्म छलिया में से पेश था ये गीत। संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी। अब आ रहे हैं अपनी आवाज से कानों में रस घोलने महान गायक कुंदलाल सैगल जी।

क्या जानू क्या जादू है, सुनहरे दौर के महान गायक कुंदनलाल सहगल की आवाज में पेश था ये गीत। उस दौर के कई उभरते गायक उनके जैसे गाने की कोशिश करते थे, जैसे कि मुकेश जी और किशोर कुमार ने। अब आ रहे हैं दिल खुश करने अपनी मीठी स्वरों में मना दे और लता मंगेशकर।

और इस गीत के साथ आज का प्रोग्राम सबरंग हम खत्म करते हैं। प्रोग्राम सुनने के लिए आप सभी सुनने वालों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार। खारिमा थी निशा।

उजान रेडियो देश भर में सुनाई देता है फियां दे बी प्लस तोर घर में तोर ओतु में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो।

0: live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं. 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

पूरा तोर दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सोते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जा।

फिल्म का नाम हसीना मान जाएगी, अरे कैसे नहीं मानेगी। सुरो का बादशाह मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में आप सलेक्शन अभी सुने हैं। चले थे साथ मिलकर, चलेंगे साथ मिलके, तुम्हें रुकना पड़ेगा मेरी आवाज़ सुनकर। आपकी खिदमत में कुछ मिले जुले संगीत हम आपको सुनाने वाले हैं आज दिन का पैगाम है। सुनते रहना प्रोग्राम को और सुनते जाना यू आर उजाला रेडियो का पैगाम। द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा और द नाइटिंगेल लता मंगेशकर।

दीवार के जरिए आप सिलेक्शन अभी सुने हैं कि मिलेगी मिलेगी एक नई जिंदगी मिलेगी, प्यार की दुनिया में एक नई जिंदगी मिलेगी। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। रेडियो के क्षेत्र पर हर एक कामकाज के वास्ते आप डायल कर सकते हैं एम्स्टरडेम में 024-09-0807 पर। लीजिए प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ मिलियंस द माइटी मुकेश और साथ में द नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज एक बार फिर से।

एजी मैंने कहा, एजी मैंने कहा हमको तुमसे प्यार है, धार्थ मिलियंस दमाई थी मुकेश और द नाइटिंगेल। लता मंगेशकर की आवाज आप अभी सुने हैं, उजाला रेडियो यू आर का पैगाम है, कुछ मिक्स मैक्स सॉन्ग्स। It's the rocking and most sensational leader in broadcasting. You are

0: जाने क्या हुआ जो तूने छू लिया। अरे जानम खिला गुलाब की तरह मेरा बदन। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर की आवाज में आप सिलेक्शन सुने हैं यू आर उजाला रेडियो का पैगाम में। हिमेश रेशमिया
1: जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे।
0: हमारे सभी श्रोताओं को एक शुभ दिन मुबारक दिन अर्ज किए जा रहे हैं स्टूडियो एम्स्टर्डम से। सुनते रहना और सुनते ही जाना।

धीमे शरशमिया की आवाज चलावो ना नैनों से बांध रे जान ले लो ना जान रे बाहर जरा मौसम देखा जाए तो बाहर जाने के लायक नहीं है। आप प्रोग्राम को सुनते रहना और सुनते ही जाना।

0: आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज आप सरशन अभी है सुने हैं। फिल्म का नाम ज्वेल थीफ, सन 1967 का फिल्म 1967। और ऐसे में हो जाए इस बार सुरो कबाचा मोहम्मद रफी साहब की आवाज। आप नाराज खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे। लीजिए ये सिलेक्शन हम पेश कर रहे हैं हमारे तरफ से हमारे सभी सुनने वालों के वास्ते। नाराज मत होना।
1: आप नाराज खुदा खैर करे, नाजो अंदाज खुदा खैर करे।

हमने बुलाया तो ना आए आप, मेरे साये से भी टकराए आप, आखिर तो कोई बात है मुझ में आज जो पास चले आए आप। सुरो का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज प्यार मोहब्बत नामक फिल्म से सन 1966 का फिल्म आपने नगमा भी सुने हैं यू आर उजाला रेडियो के जरिए। आपकी खिदमत में शहीद गुलजार हाजिर है कुछ मिले जुले संगीत लेकर आपके मनोरंजन के वास्ते, आपके दिल बहलाने के लिए। आप हमें जहां से भी सुन रहे हैं, जिस हालात में आप भी हैं, आप खुश रहे और सलामत रहे। लीजिए प्रोग्राम में कुणाल गांजावाला।

अब के सावन में जी डरे, रिमझिम तन पे पानी गिरे, मन में लगे आगसी, वाह वाह, जैसे को तैसे फिल्म का नाम है, जितेंद्र और रीना रॉय इस फिल्म में स्टार कास्ट थे। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर और द मैन विद द एवरग्रीन वॉइस किशोर दा की आवाज आप सिलेक्शन अभी सुने हैं। यू आर उजाला रेडियो के जरिए।

मर्द, ये मर्द बड़े दिल सर्द बड़े न धोखा खाना। सुरों का बादशाह मोहम्मद रफी साहब की आवाज आप सिलेक्शन सुने हैं मिस मैरी नामक फिल्म से। मैं हूँ शहीद गुलजार, हम आपसे अभी फिर मिलते हैं।

बने रहिए उजाला रेडियो पर, म्यूजिक बोलता रहेगा आपके घरों में, आपके मोटरकार में या जहां पर भी आप हैं।

चला ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड संडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Zonnig en droog, wel kan er wat sluierbewolking voorkomen. Er staat een matige aan zee vrij krachtige noordoostenwind. Het is tussen 22 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Ook morgen ongeveer dezelfde temperaturen en dan is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

लड़ती है, वो तितलियां साथ रखती है। मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

शाह भोसले और मोहम्मद रफी से आप सुने फिल्म कुर्बानी का गीत कि क्या देखते हो। ये उजाला रेडियो है सुनने वालों, और हम लोगों का तार का नंबर दफ्तर के समय तैदंस कांतोर उरन 020 409 0807।

होता है ये जिंदगी के साथ लता जी की आवाज में आप सुने उजाला रेडियो है ये। फिल्म नूरी का गीत पेश है

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहें से गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम को। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl।

अटके मत जाना, मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज और बहुत पुरानी फिल्म 1958 के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशा जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल हो।

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: You are Ujala Radio Headlines. Een 86-jarige Brit is dinsdagochtend gewond geraakt tijdens het laatste stierenrennen van het jaarlijkse festival in het Spaanse Pamplona. Het Microsoft datacenter in Middenmeer verbruikte vorig jaar 1,17 terawattuur stroom, ongeveer 1% van het totale Nederlandse elektriciteitsverbruik. Rusland heeft voor het eerst zonder aankondiging een schietoefening gehouden op het Pipersmeer, enkele kilometers van de grens met Estland. En zomerspeelweken kampen met een tekort aan vrijwilligers, waardoor kinderen soms niet kunnen deelnemen en activiteiten worden ingekort of geschrapt. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Ujala Radio. वही रेडियो स्टेशन है जो कि 24 घंटे लगता है आपको खिदमत करते हैं हर एक रोज रात और दिन वीर उन्होंने उजाला रेडियो आपके हर काम काज के लिए उजाला रेडियो सही पता है चेक फॉर मेरी इंफॉर्मेशन उजाला.net उजाला रेडियो सुनाई देता है खुली हवाओं में काबल के जरिए ऑनलाइन उजाला रेडियो के ऐप के जरिए या तो DAB प्लस के जरिए आप सुन सकते हैं उजाला रेडियो चारियोर जहां पर भी आप जाइए हम में साथ मिले जाइए उजाला रेडियो आपको हर एक वक्त हर एक हाल में काम आ सकता है काम में लाए उजाला रेडियो आपके साथ

दिल को मैंने दी कसम की ना धड़के कभी तेरे बिना। अमाल मालिक, हाँ अमाल मालिक और अरिजीत सिंह की आवाजों में आप गीत को सुने। उजाला रेडियो है ये।

लंबी लुंगी नजर हटा लो, लता जी की आवाज में इस गीत को आप सुने। और फिल्म का नाम प्यार का मौसम, फिल्म प्यार का मौसम का गीत उजाला रेडियो पर। और अब किशोर कुमार के साथ लता जी, फिल्म जोशीला का गीत।

उजाला प्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड राग एंड रिदम के साथ नेशनल इंडियन ऑर्केस्ट्रा 30 इकोनिसे स्टेमें इन एन अनवर्गेटलिके शो 19 सितंबर थिएटर द मीरवाड में मौसमी ओब्रॉय शेखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयका दत्तजीन एंड निजाम वागी दुसैन के साथ कॉपी टिकट्स ऑब्टेन्ड विया मीरवाड.nl

ये उजाला रेडियो है और इस चुन के साथ आरंभ किया जा रहा है वही प्रोग्राम जिसके इंतजार में आप है। प्रोग्राम दर्द दे दिल, दर्द भरी गीतों के साथ। इस प्रोग्राम में उन गीतों हम आपको सुनाते हैं जिन गीतों को सुनकर के कभी तो दिल को सुकून मिलता है और कभी दिल का दर्द और बढ़ जाता है। कुछ भी हो, सुनने वालों, प्रोग्राम आप ही के लिए बना रहा हूं और आपको तो पता ही है कि ऐसा कोई दिल नहीं है जिसमें कोई दाग नहीं, कोई चोट नहीं या कोई घाव नहीं या दर्द नहीं। इसलिए इस प्रोग्राम का नाम रखे गए है दर्द दिल। तो इत्मीनान से फिर आप प्रोग्राम को सुनिए और लुफ्त उठाइए। और चलिए पहला गीत जो आप सुनेंगे तो पेश है आज मुकेश जी की आवाज में।

चांद मेरी ये दास्तां, सोचता हूँ कि मैं कहूँ या ना कहूँ। मुकेश जी की आवाज़ में इस गीत को आप सुने 1963 नेखुंतिन द्रियन जस्तर की फिल्म नाग ज्योति से निकाला हुआ और संगीत से सजाइए उन दिनों सरदार मलिक। और इस फिल्म में काम किए हैं महिपाल के साथ अनीता गुहा।

मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, वो गुजरा जमाना हमें भूल जाना। गीत को आप सुने डिमांड विद गोल्डन वॉइस तलत महमूद की आवाज में। 1951 की फिल्म मदहोश से निकाला हुआ मदन मोहन, इस फिल्म में संगीत से सजाई है गीतों को। और इस फिल्म में काम किए उन दिनों मीना कुमारी के साथ मनहर देसाई जी।

ये शाम की तन्हाइयाँ और ऐसी में तेरा गम, आप सुने लता जी की आवाज़ में। इस गीत को फिल्म आह से निकाला हुआ, फिल्म आह बनाई गई 1953 नेहंतिन द्रियन फैफ्तख में राज कपूर और नरगिस के साथ, और संगीत से सजाए शंकर और जय किशन। ये उजाला रेडियो है, प्रोग्राम का नाम दर्द-ए-दिल।

मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा। बेवफाई या तो बेवफा है तो क्या हुआ, बेवफा है तो क्या हुआ, मैं जिंदगी भर तेरा इंतजार करूंगा। गीत को आप सुने अगम कुमार निगम और तुलसी कुमार इन दोनों की आवाजों में, और एल्बम का नाम बेवफाई का आलम। और अब एक बार फिर मुकेश जी हिस्सा लेंगे बहुत पुराना गीत के साथ।

जिंदा हूँ इस तरह की गमे जिंदगी नहीं, जलता हुआ दिया हूँ मगर रोशनी नहीं। मुकेश जी की आवाज में आप सुने 1948 नई खती नाख्तन फिरतख की फिल्म आग से निकाला हुआ और संगीत से सजाए राम गंगुली, और इस फिल्म में काम किए राज कपूर के साथ नरगिस, प्रेमनाथ और कामिनी कौशल जी।

से जाने वो कैसे लोग थे, हाँ जिनके प्यार को प्यार मिला। हेमंत कुमार की आवाज़ 1957 के फिल्म प्यासा से निकाला हुआ गीत, और संगीत से सजाए सचिन देव बर्मन, और इस फिल्म में काम किए गुरुदत्त के साथ वहीदा रहमान और माला सिन्हा जी। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्दे दिल।

दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया, लता जी की आवाज। 1975 तक की फिल्म एक महल हो सपनों का और संगीत से सजाए रवि। फिल्म में काम किए शर्मिला टैगोर के साथ धर्मेंद्रा, अशोक कुमार और लीना चंदवरकर। उजाला रेडियो पर आप अब लता जी को सुनेंगे एक बार फिर, अब मोहम्मद रफी साहब के साथ।

याद में तेरी जाग जाग के हम सारी रात करवटे बदलते रहे। लता जी के साथ मोहम्मद रफ़ी को भी आप इस गीत में सुने। 1963 में इखनतिंद्रियन जस्तख के फिल्म में गीत पेश आई है, फिल्म का नाम मेरे महबूब, और संगीत से सजाइए नौशाद। और फिल्म में काम किए अशोक कुमार के साथ, राजेंद्र कुमार, साधना और निमी।

तभी दिल दिल से टकराता तो होता। मुकेश जी की आवाज 1948 नेहंतिन अख्तन फिरतक की फिल्म अनोखी अदा से निकाला हुआ नौशाद संगीत से सजाए और इस फिल्म में उन दिनों काम किए सुरेंद्र के साथ नसीम बानो और प्रेम आदिब। उजाला रेडियो है ये प्रोग्राम दर्दे दिल।

जब याद तुम्हारी आती है तो दिल खून के आंसू रोता है। भूपिंदर और अन्नू राधा पौडवाल से आप सुने। फिल्म का नाम बेवफा सनम 1995 में नेखंतिन फैफन नेखंतख में इस फिल्म को बनाए गए और काम किए इस फिल्म में कृष्ण कुमार, शिल्पा श्री रोदकर और किरण कुमार। उजाला रेडियो और अब नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज़ में गीत सुनिए, दर्द भरी गीत प्रोग्राम दर्द दिल में।

छोड़ाए ऐसी होती है तन्हाई। नुसरत फतेह अली खान साहब की आवाज में आप सुने गीत को 1999 के फिल्म दिल लगी से निकाला हुआ। और सुनने वालों, प्रोग्राम दिल लगी में आज के लिए एक आखिरी गीत पेश है किशोर कुमार की आवाज में।

live vanuit de Hoofdstad. Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 आवाजें फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

चलार ब्रासा मेला फेस्ट इंडोर समर एडिशन डेन हाग में फूड म्यूजिक डांस शॉप मार्केट कल्चर फैमिली एंटरटेनमेंट टेस्ट बॉलीवुड फाइव्स एंड बीट्स ब्रासा फेस्ट जाटरडे 29 एंड जोंडे 30 अगस्त इन जिया इवेंट सेंटर हे यू

0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जान है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो डीएबी प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ujala Radio Kist Studio mee. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap Hamse Baatker zegt hij. Or Ham, Aapse Baatkeringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kist WhatsApp nummer hè. Brasa Mila Fest, Indoor Summer Edition Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Brasa Fest in Gia Event Center. Koop je tickets via brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर एक कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नहीं लॉन्ग तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए।